0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मैं अपने घर के आंगन से उसको कितनी ही खुश रंग तितलियां पकड़ दूं, एक रंग की कमी रहेगी वो किसको माँ कहेगी।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मैं अपने घर के आंगन से उसको कितनी ही खुश रंग तितलियां पकड़ दूं, एक रंग की कमी रहेगी वो किसको माँ कहेगी।

तफतन इधर से, ये जो तफतन इधर से गुल मोहर की शाख को हटाकर उभरा है उफक पे चांद मेरा, इस चांद का हुस्न तो वही है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: This one's dedicated to my boy B. Brian,

दास है, इस गम की जिंदगी में मुझे तेरी आस है। हर वक्त तड़पता रहता हूँ, फरियाद करता हूँ, इस वक्त चले आओ मैं तुमको याद करता हूँ।

जब से तुम्हें देखा है आंखों को करार नहीं, कोई और तो मेरा प्यार नहीं। नजरें प्यासी हैं, दिल उदास है, बस तेरी यादें मेरे पास हैं। तुम्हें देखने को बेकरार हूँ।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: والطور وكتاب مسطور।
3: कोहे तूर की कसम और किताब की जो लिखी हुई है।
2: في رق منشور।
3: कुशादा औरात में।
2: والبيت المعمور।
3: और आबाद घर की।
2: والسقف المرفوع।
3: और ऊंची छत की।
2: والبحر المسجور।
3: और उबलते हुए दरिया की।
2: إن عذاب ربك لواقع।
3: कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़े होकर रहेगा।
2: ما له من دافع।
3: और उसको कोई रोक नहीं सकेगा।
2: يوم تمور السماء مورا।
3: जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपाकर।
2: وتسير الجبال سيرا।
3: और पहाड़ उड़ने लगे ऊन होकर।
2: فويل يومئذ للمكذبين।
3: उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है।
2: الذين هم في خوض يلعبون।
3: जो खौज बातिल में पड़े खेल रहे हैं।
2: يوم يدعون الى نار جهنم دعا।
3: जिस दिन उनको आतिश जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे।
2: هذه النار التي كنتم بها تكذبون।
3: यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे।
2: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون।
3: तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता।
2: इस्ला

0: फर्क ये रहना था कि कल्चर आप उसको बना रहना था, मगर जिस जगह से आप बैंड कर रहे थे वो फिर प्रॉब्लम तो उसको करानी थी। अब इनने आपसे सच बोला, आपने इनसे ज्यादती की है, तो बात इनने मस्जिद कह दिए तो नहीं बनाना, मसला कोई है नहीं है। जिसके साथ मसला था वो एक स्पार है उधर, कोई स्टोर है, उसने मसला डाला हुआ था, वो भी उसकी भी आज सच का नहीं निकला ये कि उसकी पार्किंग के अंदर 4 से 5 ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती एक टाइम पे। मुझे तो पता ही नहीं कि उसको मुसीबत क्या थी और उसने इतना बड़ा क्या कहते हैं इस तरह की हरकत क्यों की है, ये तो किसी को समझ नहीं आ रही।
1: अदनान देखे ना, किसी की पार्किंग में गाड़ी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ये इतनी घर बात पे दाव लगा के जो है वो कानून को बाईपास करके आगे बढ़ा जाए, ये भी तो कोई तरीका नहीं है। खुद भी तो कोई बंदे को एटिकेट्स होने चाहिए।
0: देखिए राजा साहब, बंदा देखें कुछ 1 में से 20 होते हैं जो जो होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एब्सलोन का मुंह रहता हूँ, यहाँ पे एक मैं उसका टेक्निकली मैं बताता हूँ उसका मसाइल का था। उसकी एक मसला था कि 72% वो क्या कहते हैं गैर मुल्कियों पे जा रहे थे और 38% जा रहे थे गोरों पे। मगर जब हमने देखा ना कि दूसरी जगह जहाँ पे वो मिसाइल के लिए प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे वो जा रहे हैं वहां पे हमारे पास जगह नहीं उसके लिए, तो फिर जब हमने एनालाइज किया ना तो वो यही कह रहा था देखें कि हम गैर मुल्कियों का केस बहुत जल्दी ले लेते हैं और गोरों का केस हम इतनी जल्दी नहीं लेते। तो मैंने कहा यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैर मुल्की ने सर किया भी ना कुछ हो तो आप केस उठा लेते हो, आप देखते नहीं हो, तो फिर आपके खर्चे फालतू हो जाते हैं। मैंने कहा ये मतलब नहीं कि एक गैर मुल्की ने चपेड़ मार दिया कुछ कर दिया तो 20 चपेड़ मार देंगे। मैंने कहा सर सोच समझ के आप देखा करें कि सामने क्या हो रहा है।
1: एक बंदे की गलती को एक बंदा ही काउंट किया जाए, सबको काउंट ना किया। अदनान आपने देखा डेफिनेट, आप बच्चों को सुबह देखते हैं, मैं भी कभी कभी ये देखता हूँ, सर्वे भी करता हूँ, स्कूल के बच्चे पे जाते हैं, उसके बाद जो है वो वालदैन छोड़ने भी आते हैं, उसके बाद फुटबॉल पे भी लोग जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जाते हैं, कॉलेज में भी जो बच्चे जाते हैं, तो आप सुबह देखें कि किस तरह जो है वो जेबरा क्रॉसिंग पे लाइनें लगी होती हैं, किस तरह साइकिलों की लाइनें लगी होती हैं, और कितने बच्चे कितनी तादाद में कॉलेज के बाहर खड़े हों तो बंदा होता है यार इतने लोग आते हैं, स्कूलों के बाहर खड़े होकर देखें तो बंदा कहता है इतने लोग आते हैं, बाने में जाकर देखें तो बंदा होता है यार इतने बच्चे छोटे आते हैं। तो ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए ना कि
0: देखिए ना
1: जनरेशन
0: ये
1: तब्दील
0: एक
1: हो रही है, ये बच्चे क्या
0: सिस्टम
1: सीखें, ये यही कुछ सीखेंगे जो इनका कानून कहता है इनको सिखाता है।
0: जी, ये देखिए ना ये डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। मैं आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट डे था स्कूल का, मैं अपनी कमू में गया और मैं बच्चों बच्चों को छोड़ने गया, मैं बोर्ड का मेंबर भी था, मेरी जिम्मेदारी भी थी। एक ने गाड़ी गलत खिला दी, कहती है मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैंने कहा मतलब तेरे पास जगह नहीं है, तो कहती है टाइम नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तो मैं नहीं तो पता क्या फर्स्ट डे है, कहती है मुझे पता था। तो मैंने कहा फिर तुम 10 मिनट पहले क्यों नहीं आई, ये मतलब तो ना कि तुम 10 मिनट पहले नहीं आ सकती तो तुम पूरी सड़क ब्लॉक कर दो। मैंने कहा 10 मिनट पहले आ जाती तुम्हें जगह मिल जानी थी, मगर तुम 10 मिनट लेट आई हो तो अब तुम ये मतलब तो नहीं ना कि तुम पूरी सड़क बंद कर दो। कहती है नहीं मुझसे गलती होगी। मैंने कहा गलती होगी है मगर अगली बार सोचो, क्योंकि ये जो चीज तुम कह रही हो ये तुम्हारा बच्चा देख के भी ये फॉलो करेगा, वो
1: अदनान
0: क्लासेस
1: देखें,
0: जाएंगे।
1: लोगों को जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं, नई नई दुकानें खुलती हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, लोगों की लाइनें लगी होती हैं। मेरे नज़दीक ही एक मैं देख रहा था एक चीज़ खुली है, बर्गर किंग टाइप इस तरह की बेकसार चीज़ें जो हैं वो ख़ुद जो है वो सोशल मीडिया का खिलाड़ी है, तो तकरीबन 1-1.5 फरलांग लाइनें लगी होती हैं। आप मुझे बताएं कि पहले भी उस एरिया में पार्किंग नहीं है तो जो लोग गाड़ियों पे आते हैं वो गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे, जो बिल्डिंगों में रहते हैं वो कहाँ पार्क करेंगे, कुछ पूछने देखने वाला है लेकिन नहीं जी टैक्स आएगा, इनकम होगी टैक्स आएगा।
0: जैसा सब देखिए इन चीजों पे ना सारा काम कर किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला लोगों को भी पता है, क्योंकि ये मसाइल है, यही वन ऑफ द मसाइल। कोपेनहेगन में काफी टाइम लगा है और मैंने उनका बजट नहीं पढ़ा, मगर उनने भी बड़ी बहस की है कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए और इंशाल्लाह ताला इन चीजों पर
1: इतना
0: काम
1: बड़ा
0: किया जाएगा।
1: बजट है कि अपनी वो फिक्र ही नहीं पड़ी जाती।
0: नहीं, वो ये ना जैसा सब
1: चलें अदनान, आप चूंकि इसलिए आपसे मल्टी किस्म के सवाल करते हैं क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं।

0: जाते रहते हैं, बातें भी करते हैं, खुद उसमें शामिल भी होते हैं। अजान काफी टाइम हो गया, कम्यून के इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम जो है वो इधर से उधर बाल, उधर से उधर बाल, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरह की बातें चल रही हैं, कोई ठोस चीज़ बाहर नहीं आ रही, कोई ठोक पॉलिसियां बाहर नहीं आ रही कि ताकि ये काम करें तो अगली दफा इन्होंने वोट नहीं लेने दोबारा।
1: सब वोट सबने लेने होती है, मगर मसला ये होता है कि जो पहला साल होता है ना वो बड़ा टफ होता है, क्योंकि काफी चीजें जो होती हैं वो सीखनी होती हैं, टेक ओवर करनी होती है। आप इंशाल्लाह ताला ये जब बजट बन जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ तब्दीली आएगी और कुछ चीजों में भी आएगी। रीजन का मैं ये कह सकता हूँ कि रीजन का जो मसाइल रहा है ना वो ये रहा है कि पूरा जो शेलन है ना उसको एक रीजन में बनाना था, तो वो भी क्या कहते हैं टाइम टेम टिल था, और कुछ रीजन के जो काम थे वो कमूनों में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट कपल ऑफ वीकेंड्स बजट के बाद आपको नजर भी आना लगेगा कि कुछ तब्दील चीजें तब्दील हो रही हैं और कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला काफी चीजों की सूरत नजर निकल आएगी कमिंग्स वीक और कमिंग मंथ्स में, और
0: अदनान
1: नेशनल
0: आपका
1: पैन पे
0: बहुत
1: भी
0: शुक्रिया।
1: ऐसे ही।
0: अदनान देखिए ना, आज इस वक्त जो है 9:23 हुआ चाहते हैं, जो लोग इस वक्त लाइव सुन रहे हैं उन्हें तो सब चीज़ का पता है, गाड़ियों में या किसी और जगह पे, घरों पे या मुख्तलिफ़ मकामात पर या किसी भी हिस्से शहर के हिस्से में सुन रहे हैं, उन्हें तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो लोग आगे सीना गजर कुछ सुनाएगा किसी को तो वो सारी आपकी बातों को जो असल मकसद है वो तब्दील कर देते हैं।
1: सब मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और मेरा काम है कि लोगों के लिए बेहतरी करना, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया और यही मैं अपने नक्श कदम पर लेके चलूंगा, और अल्लाह की बस मेरी दुआ ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी इस नेक काम में ही रहें और आगे उनको अल्लाह ताला अपनी जिंदगी में कामयाबी दे। तो मेरे लिए तो यही है कि मैं जितना हो सकता मैं करता हूँ, अभी आपके अभी थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा जो है उसको मोबाइल दूसरे कमरे में मैच देख रहा है, उसको थोड़ी बातें करूंगा, फिर उसको वो सो जाएगा, उसके बाद फिर मैं थोड़े बहुत अपना क्या कहता है एक आधा घंटा ऐसे पढ़ता हूँ, कुछ चीजें देखता हूँ कि कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं ना जो मुझे नेक्स्ट डे, तो इस तरह बंदे का होता है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि मेरा इरादा है नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने का, तो वो तो इंसान प्रिपरेशन रखेगा तो वो लड़ सकता है ना फिर, वरना तो बंदा
0: नहीं,
1: पीछे हो
0: एक
1: जाता है।
0: दिन में जो 3 महीने के अंदर आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्हें पता ही नहीं होता हम किस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो अभी से इरादा करें उन्होंने 3-4 साल मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, बताना, लोगों को समझ आएगी कि ये लड़का लड़की जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये किनकी तबीयत कैसी है, ये क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे
1: इरादा
0: बेहतरीन तरीका आपने अपनाया, पहले भी आप एक्टिव थे, अभी आपने शुरू से ऐलान कर दिया है।
1: साहब अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी अल्लाह ताला की जो नसीब में होगा वो ही होना है, जो इंसान के नसीब में लिखा होगा वो ही होना है, नसीब और रिस्क जो है वो उसके हाथ में है और ये बंदा नहीं कुछ कर सकता इसके अंदर।
0: अदनान आपका बहुत शुक्रिया। अदनान मैं समझता हूँ जितनी मुझे समझ है, जितना तजुर्बा है, जितना हम लोगों से पूछते हैं, आते हैं, बात करते हैं, अदनान देखें कितना प्यारा मुल्क है कि आपको हर चीज़ जमहूरी तरीके से मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर अच्छी चीज़ हमें मिलती है। कहीं वो होता छोटा मोटा, ज़ाहिर है कितने बड़े लोगों में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, घर में जो घर में अफराद रहते हैं उनमें भी तो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। एक मुल्क चलाना, एक मुल्क में रहना, अस्पतालों की सहूलियात, बाकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, बसें, ट्रेनें, क्या क्या मेरा टिकट ज़्यादा है या आपका थोड़ा है, सबके टिकट बराबर हैं, सहूलियात जो है वो डिफरेंट होती हैं।
1: नहीं दादा साहब यही है, और अल्लाह ताला के कहते हैं सब कुछ है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि
0: बस
1: हमें
0: अदनान
1: इस
0: आप
1: मुल्क में
0: लेकर चलें,
1: जगह
0: लोगों
1: मिली।
0: को साथ लेकर चलें, लोगों को बताएं, हकायक बताएं कि हमारा आने वाला जो वक्त है वो तो वक्त वो अगले पता होता है और होता है, लेकिन अकल भी तो इंसान को, तालीम क्यों हासिल करता है बंदा, वो कहे जी खुद ही आ जाएगा,
1: यही
0: मैं खुद
1: दादा
0: ही कॉलेज में
1: साहब
0: चला जाऊंगा, मैं खुद ही डॉक्टर
1: यही
0: बन
1: दादा
0: जाऊंगा,
1: साहब
0: मेरी किस्मत में
1: मैं
0: लिखा हुआ है। तो ये
1: यही
0: चीज़ें
1: मैं
0: तो अपनी
1: कहता हूँ,
0: जगह दुरुस्त है, किस्मत होती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें खुद भी करनी पड़ती हैं, तब बंदा डॉक्टर बनता है, तब सियासतदान बनता है, जब वोटें पड़ती हैं, जीतता, इलेक्शन जीतता तब बनता है।
1: दरअसल मैं आपको भी बात बताऊं, इंसान को ना हर अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए, और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं थोड़ी देर पहले आया तो मेरी बेटी कुछ करना चाह रही थी तो मैं डाउट था, फिर मैंने उस चीज़ पे टाइम लिया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये है, कहती है नहीं बाबा तो तुम देख लो तो बाहर से बदल गया हुआ, मैंने कहा हाँ ये बदल गया हुआ है, तो फिर मेरी तसल्ली हुई। इंसान को हर वक्त अपने आप को तैयारी करनी चाहिए कि इंसान किसी की मदद कर सके, और जो इंसान से हो सकता है वो इंसान को करना चाहिए। तो मैं राजा
0: बहुत
1: साहब
0: शुक्रिया अदनान
1: इंशाल्लाह
0: आपका,
1: कल,
0: आप भी टाइम की पाबंदी करते हैं डेविन, हमें मजबूरन भी करनी पड़ती है, लेकिन हमारी तबीयत में भी टाइम की जो पाबंदी है वो शामिल है। तो वक्त और लिहाज जो है हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम जब खुद मिसाल बनेंगे, बच्चे भी देखेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, दोस्त भी देखेंगे सुनेंगे वो भी पाबंदी करेंगे। लेकिन चूंकि बाज़ जगहों पर बड़ा रिवाज होता है कि 9 बजे अदनान से बात करनी है तो 10 बजे बात करके कहें जी अब बात कर, ये नहीं पता इसकी अदनान की 10 बजे क्या मसरूफियात होंगी, या अदनान सो गया नमाज पढ़ के या अपने काम पे लगा हो, ये हमारी एडिक नहीं होती कि मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो मुझे 9 बजे ही बात करनी चाहिए।
1: साहब देखिए, मैंने हमेशा एक चीज याद रखी है कि जो टाइम होता है ना उस पर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे बंदा करे। अब इंशाल्लाह जरा ये देखिए, 9:30 होने वाले हैं, मुझे पता है कि 5-10 मिनट बाद मेरे बच्चे ने सोना है, मैंने उसको क्या कहते हैं तैयार करना है, क्योंकि उसको मैं टाइम से नहीं सुवाऊंगा तो वो टाइम से स्कूल नहीं पहुंचेगा, स्कूल नहीं प्रेस पहुंचेगा तो वो पढ़ नहीं सकेगा। तो यही तो चीजें होती हैं कि मैं फिर टाइमिंग और ये चीजों को देखना पड़ता है और इंसान को करना पड़ता है। तो
0: यही तरक्की का राज है,
1: ये
0: यही हमें दीन भी सिखाता है, वक्त की कदर करें।
1: यही कुछ हमें सिखाता है। तो राजा साहब, मैं इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बस ये कि आप अपने आप को देखें, बेहतर करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, और इससे ही आपकी क्या कहते हैं अपनी हिम्मत आती है।
0: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह अब रब्ता रहेगा।
1: ओके ओके, अल्लाह हाफिज।
0: सामान नाजरीन, ये थे अदनान अली अमीन जो कि आपको ताज़ा तरीन मालूमात भी दे रहे थे, अपना तजिया भी पेश कर रहे थे। गपशप की शक्ल में सामान हम कोशिश करते हैं गपशप की शक्ल में प्रोग्राम करें, बड़े बड़े वजनी सवालात करना या बड़े बड़े वजनी जवाब लेना, फिर बहुत सारी बातें जो है वो समझने से भी, वो कानों के ऊपर से भी गुजर जाती हैं। तो इंसान को सारी बातें करनी चाहिए लेकिन एक दोस्ताना माहौल में करनी चाहिए।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: पर देखें, बड़े बड़े औहदों पे मालमों में पाकिस्तानी लोग, अरबी लोग फायज हैं माशाल्लाह, जिनकी तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख करोड़ है पर मंथ। तो वो मतलब वो कम्यून के जो फाइनेंस की जो चीफ है वो भी एक अरबी लड़की है। तो मतलब कि यहाँ पर हैं बहुत सारे लोग हैं, बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो इसमें आए हुए हैं। तो इसका मतलब हमें जगह मिलती है, लेकिन जरूरत एक बात इस बात की है कि हम लोग इकट्ठे रहें, एक दूसरे को समझें, हम यहाँ की सियासत को समझें, अपने बच्चों को यहाँ की सियासत के अंदर लाएं, और हम इंटीग्रेट इस सिस्टम में हों, ना कि इंटीग्रेट हों यहाँ पे, सोच हमारी पाकिस्तान में मेंटली तौर पर रहें और पाकिस्तान की सियासत को यहाँ पर घसीटते रहें। आप सपोर्ट करें, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ कोई जो है ना सियासत, उसको भी समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखें जितना भी माहौल है, अब जो नए लोग आए हैं इस इलेक्शन में, वो काफी इंटीग्रेट हुए हैं, उनको काफी हद तक लोगों ने बताया, समझाया है, लोगों को पता चला है कि यहाँ पर अगर हम सियासत में नहीं आएंगे, हम वोट नहीं देंगे, तो ये मुस्तकबिल हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला होप और पॉजिटिव रखनी चाहिए।
1: चलें, शायद आप बात करें आखिर में।
2: जी राजा साहब, मैं इस जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके हवाले से बात करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने जो देखा है, स्कैंडिनेवियन जो मुल्क हैं इनमें खासकर देखा है, मैं इसके अंदर चलें यूरोप में दूसरे ममालिक में, इंग्लैंड भी ले, इंग्लैंड इंग्लैंड को भी शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी उधर से भी मेरा है वास्ता, मेरे भाई हैं उधर। तो तीन किस्म के वोटर होते हैं इधर। एक जो पहला जो 4 साल जो है ना इस सियासत को फॉलो करता रहता है, पूरी जो सियासत चल रही होती है अपने उस मुल्क के अंदर पार्टियों की। और दूसरा जो वोटर है, वो जो नंबर दो जो वोटर होता है, वो बहुत कम फॉलो करता है, वो अपने रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ होता है लेकिन फॉलो करता है, लेकिन बहुत कम, ना होने के बराबर। तीसरा जो वोटर है ना, वो है सबसे खतरनाक इधर, और वो होता है जिसे कहते हैं कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का शिकार। और वो जब किसी महफिल में बैठता है, ये भी लोग बैठते हैं महफिल में, आपसे आपके साथ भी बैठते हैं, दूसरे फॉरनर्स के साथ भी बैठते हैं, बातें करते हैं, आपस में बैठते हैं, तो उसमें वो यही बातें छते जब चलती हैं, बैक चैनल जब बैठते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि नौ यश के एक यश के एक की मीन यानी कि मैंने अपना जो वोट है यश के एक तील से मैं पीए खैश को क्या कहते हैं इधर जिमी आकर्षण को तो कतई मैं वोट नहीं दूंगा या दूंगी। तो जिस दिन वोट होता है इनका, ये है ये वो वोटर है, जिस दिन वोटिंग होती है जिस दिन, तो वो जब घर से निकलने तक कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, जब वो जा रहे होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि विरुवे इतने मैं आज अपना जो वोट है वो मैं क्या कहते हैं एक वो कास्ट करूंगी, मेरा ख्याल है पीए खैसको को ते फा सेकिंग स्कूल, यानी कि मैं ये समझती हूँ कि इससे जो है ना हमें कोई नुकसान ना हो जाए, तो हम नुकसान से बचने के लिए हमें वो कहते हैं बचा लेंगे, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ, या मैं नहीं समझती, या मैं नहीं समझता कि वो ठीक है, लेकिन मैं एक सेफ्टी की बुनियाद पर ना आज जिमी आकर्षण को वोट में कास्ट कर देता हूँ। ये नंबर तीसरा वोटर है यहाँ पर जो कंफ्यूजन का शिकार होता है, वो कहते हैं आहर तक, और ये भी बड़ा वो एक वो खतरनाक वोटर है। तो मैंने मैंने जो बात की इसके हवाले से क्या कहते हैं ये जो है यहाँ पर मीडिया मीडिया का किरदार, मैं इसको फिर दो टोक कहूंगा, मैंने इस मीडिया के इनके मीडिया के किरदार को खासकर मुसलमानों के ऊपर तनकीदियां बनाए तनकीद जिसे कहते हैं, वो एक इस हद तक चली जाती है यहाँ पर जो डिबेट होती है 1.5-2 माह से, बंदा हैरान रह जाता है, और वो इतनी दिल शिकनी कर देते हैं यानी कि इस हद तक चले जाते हैं कि वो आप सोच भी नहीं सकते। आपने खुद देखा होगा कि यार ये लोग हैं वो, तो जब फिर मैं पीछे जाके फिर इनकी हिस्ट्री देखता हूँ, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 1000 साल पुरानी, फिर मैं देखता हूँ 300 साल, यार ये तो वो लोग हैं जो ये अभी तक इनके जेहन से वो तकबर ان کے ذہن سے وہ چیزیں نہیں نکلی. یہ تو غلام بنا کے رکھتے تھے. یہ ان کی دیکھیں جا کے ان کے مکروہ چہرے کہ یہ اتنا ظلم کرتے تھے. یہ ادھر ان کی نظر پڑتی کہ تم لوگ کیا کرتے تھے. تم لوگ یہ زیادہ پرانی بات نہیں.

0: है, और ये बात इनको फिर बावर करानी पड़ती है, फिर ये उसके ऊपर छुपते हैं, फिर पीछे करिए ये बात ना करें, ये एक माजी है, इसके ऊपर बात ना करें। मैं कह माजी है, माजी है, आप अभी भी मॉडर्न तरीके से इस तरह लोगों के साथ ऐसे कर रहे हैं। आप क्या करते थे, आप अफ्रीकन मुल्कों से लेके गुलाम कहाँ कहाँ नहीं आप लेके गए, अमेरिका लेके गए हैं, साउथ अमेरिका लेके गए हैं, वहां जाके आप गन्ने की काश्त से लेके क्या क्या आपने नहीं किया उनसे, कराए जुलम 200 साल तक आप जुलम कराते रहे, मिलियंस आप लेके गए, मिलियंस ही आपने मारे लोग, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप ये बातें कर रहे हैं और अभी भी आपके अंदर इतनी वो कराहत है, इतना गुस्सा है, इतना आप ये इंसानियों को की जो बात है ना, ये उन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती जिनके दोहरे मयार होते हैं। यही वो
1: जिनके
0: लोग
1: दोहरे
0: हैं जो
1: मीयार होते
0: इंसानियत
1: हैं। शायद आपका
0: जिन
1: बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अजी साहब, आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, शाह साहब भी बुज़ुर्ग हैं, तो मैं चाहूँगा अगर कोई आप आखिर में कोई कमेंट देना चाहे तो हमारे पास 2-3 मिनट हैं। जी शे अपना हाजी साहब।
2: जी मुझे कह रहे हैं आप,
1: जी हाजी साहब आपको।
2: बस मैं यही कहूंगा जी कि उन्होंने तारीख भी दोहरा दी शाहिद ने, और मैं एक बात करता हूं कि एक आदमी ने डैनिश को मशवरा दिया कि आप ऐसे कर लें, उसने कहा तुम मुझे मशवरा दोगे, हम तो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करके आए, तुम्हारा मशवरा हम माने, ऐसा नहीं हो सकता, हम सीनियर हैं, आप दो नंबर हैं, आपका दर्जा, नेशनलिटी, मकान, डिग्री, हाई, सब कुछ होने के बावजूद हम आपको, कि उन्होंने कहा कि पूरे यूके में मिलियन मिलियन जो है मुसलमान रह रहे हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया से, उन्होंने उनको सब कुछ हकूक देने के बावजूद उनको दर्जा दोन का शहरी समझ रखा है। शाहिद के अल्फाज की मैं तशरीह कर रहा हूँ।
1: राज साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आप अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, गालबन अदनान जो है वो सुन रहे हैं, माइक उनका काम नहीं कर रहा।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और उम्मीद है कि आज अच्छा रिजल्ट आएगा और इंशाल्लाह ताला दो हमारे उम्मीदवार मालवों से कामयाब होंगे। याद रखें कि जब हम किसी महफिल में बैठते हैं तो दूसरे की तरफ देख के कहते हैं कि ये हमारे गांव का कमी था, ये
1: हाँ
3: हमारे गांव में इस तरह था, ये फलाना था, तो उससे ये होता है कि जब आप यहाँ पे अरबोंपति भी हो जाए, आपके पास रोल्स रॉयस गाड़ी भी नीचे हो जाए, तो जब आप वोट के लिए खड़े होंगे, सियासत में आएंगे, तो फिर वो आपकी आपके नीचे से कुर्सी जरूर खींचेगा। हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब समझना चाहिए और हर कलमा गो को अपना भाई समझना चाहिए। वह उसका किरदार कैसा भी हो, उसके उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, खसूसी तौर पे सियासियों को। शायद ने जैसे जिक्र किया, आप याद रखें कि जब मैं यहाँ की वेंट्रा पार्टी में 1972 में मैंने ज्वाइन की, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो फॉरनर मुझे मिले वो पोलिश और चेक रिपब्लिक और चेक स्लोवाकिया के और दूसरे कम्युनिस्ट कंट्री से आए हुए लोग थे। आपके स्वीडन में भी बहुत ज्यादा जो है वो लोग जो है वो रशियन कंट्री से और डीआर से और दूसरी ममालिक से वहां पे पोलिश वगैरह भी आके सेटल हुए हुए हैं, और अब वो लगते तो स्वीडन है कि उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन जो है या फोर्थ जनरेशन वहां पे पैदा हो चुकी है। वो लोग जो है राशिस्ट हैं, वो जो असल स्वीडिश है या असल डैनिश है वो आपसे थोड़ी सी आर्गुमेंट तो जरूर करेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको देखेंगे कि आपका रवैया जो है थोड़ा सा नरम है, तो वो उनको करके माफी मांग के चला जाएगा। तो ये जो सियासत है ये बड़ी बेरहम होती है, इसके लिए हमें अपना तर्ज अमल जो है वो ठीक करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, कामयाबी फिर जो है वो सच्चाई पे ही है। ये आप सबका शुक्रिया जी।
1: कामयाबी से चाय पिए। सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने कीमती टाइम दिया, छुट्टी का दिन था, और नईम साहब स्पेशली आपका रुबारी आदमी है, आपका भी जो है वो, आपके भी लोग आपके पास आते हैं, आपका भी टाइम हमने लिया, शायद आपका भी टाइम लिया, अजी साहब आपका टाइम भी, शाह साहब आपका टाइम भी, तो पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: जिंदाबाद
0: जिंदाबाद।
4: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। तो इस वक्त जो हमारी मेहमान हैं वो लुबना इलाही साहब हैं, ये साबका सिटी काउंसलर हैं, और नौजवान सियासतदानों में इनका सबसे पहले नाम आता है, और उसके बाद सिकंदर आया, वो भी नौजवान था, آج سکندر سے بھی بات ہوگی، لیکن وہ ان کا ٹائم اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے، باقی باتیں بھی کریں گے، ہم خود بھی انالائز کریں گے، ہماری ٹیم بھی انالائز کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ جن جن کے مہمانوں کا ٹائم ہوگا تو ٹائم کی پابندی ہم اگر خود نہیں کریں گے پھر دوسرے کیسے پابندی کرتے ہیں۔ سامع ناظرین، اس وقت لبنہ الہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ لبنہ، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
5: سننے والوں کی خدمت میں سلام اور شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔
1: لبنہ، چونکہ وقت اس لیے آپ کا بنتا ہے، آپ کا بولنا بنتا ہے کہ آپ بہت پرانی سٹی کونسلر رہیں اور اس کے بعد لوکل جو تنظیمات ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، پارٹی کی آپ ممبر ہیں، حکومتی جماعت پارٹی کی آپ ممبر ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کمیون کو دیکھتی ہیں، پارلیمنٹ کو دیکھتی ہیں۔ آئے دن یہ جو نئے نئے قانون نیشنلٹی کے حوالے سے یا دوسرے چیزوں کے حوالے سے، کیٹاگری فائیو کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو بحث چل رہی ہے کوپن ہیگن پارلیمنٹ میں یا کمیون میں یا اخبارات میں چل رہی ہے، ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟
5: میں سب ان ساری چیزوں کی کو ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے بغیر سوچے سمجھے آگے پیچھے دائیں بائیں ووٹ پھینکے گئے ہیں یا دیے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے دیے نہیں، یہ جسٹ سمپلی اس کا ریزلٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ جس پارٹی سے میں ہوں، ریڈیکل وینسٹا کی، ہم اس چیز کے حامی ہیں کہ بچوں کو بائی برتھ نیشنلٹی ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ ڈنمارک میں ایک قانون ہے کہ جب ووٹ پارٹیوں کو ملتے ہیں تو ان کو الحاق کرنا پڑتا ہے، یہ اس میں آئین میں ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی جو نہیں وہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو انسان نہیں سوچا، جو کہ پارٹی کے پروگرام کا حصہ نہیں ہے یا پارٹی کے مینیفیسٹو کا حصہ نہیں ہے۔ تو میں تو آپ کو پتا ہے جب سے یہ پارلیمنٹ کے الیکشن کا ریزلٹ آیا میں تو اسی دن سے کہہ رہی ہوں کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی، اور اب تو میری واقعہ دعا ہے کہ یہ نہ چلے نا، کیونکہ ایک بندہ اس ملک میں یعنی دکی فور دا رائٹس از کہ جب بھی کہتے ہیں کہ تم پہلے اپنے فرائض ادا کرو اس کے بعد اپنے حقوق مانگو، تو فرائض نہ ادا کرنے کی تو کوئی تکی نہیں بنتی نا، مطلب ہم اپنی مرضی سے ٹیکس تو نہیں دیتے نا، جیسے میں کہوں میرا دل نہیں ہے، وہ تو خود بخود کاٹ لیتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات زیادہ ہی کاٹ لیتے ہیں، پھر دو تین سال بعد خیال آتا ہے کہ نہیں یہ نہیں یہ تھا۔ تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بنایا، میں اس سے اگری نہیں ہوں، بٹ جب آپ سارے اس پروسیجر سے گزر کے کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر تو کوئی بحث نہیں نا ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہے کیونکہ بیسیکل دینا ہی نہیں چاہتے۔ تو میں تھوڑی سی پریشان ہوں کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، کیونکہ ایک ہی جملہ آتا ہے کہ سامے اولے نہیں لاؤ، مجھے بالکل یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی طور پہ یہ چاہتے کیا ہے۔ جیسے جو ایسٹ یورپ کے لوگ ہیں وہ جیلوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں کہ جیلوں میں زیادہ جرائم پیشہ لوگ ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں انوانتا، اس میں بتاتے نہیں کہ کون سے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو ایک زمانے میں صاف لکھتے تھے فلانا جرم اس کے آگے یا مسلمان یا پاکستانی، تو وتیرہ ہی چینج ہو گیا۔ اور دوسرے جو ہمارے اپنے بچے بچیاں مختلف اداروں میں ہیں، کاش وہ مل بیٹھے ہمارے پاس، جج سے لے کے وکیلوں سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے، لیکن وہ نہیں بیٹھتے، وہ پاکستانی تنظیموں سے انتہائی الرجک ہے، وہ اس کو وقت کا ایک ضائع کرنا سمجھتے ہیں، اپنے ٹریڈ یونینز میں کام کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ووٹ کرنے کی بات ڈالیں تو وہ مطلب جن کو آپ نے ووٹ ڈالے ہیں جائیں ان کا گریبان پکڑے کہ بھائی آپ کی پارٹی نے یہ کی ہے، ان پڑھ تو کوئی بھی نہیں یہاں پہ، لیکن نہیں وہ بس انہی دنوں ایک ماحول اٹھتا ہے کہ جی اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو نہیں دینا، یہ کرنا ہے وہ کرنا، اس کے بعد اللہ تیری یاری، ختم بات۔
1: آپ نے بالکل بجا فرمایا، آپ نے بچپن جوانی جو ہے اس سیاست کی صحرا میں گزاری اور بہت ایکٹیو گزاری صحرا میں، آپ اس پارٹی کے آپ ممبر ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کھل کر واضح ثبوت کے طور پر بات کی کہ ہماری پارٹی کا جو منشور ہے بائی برتھ جو ہے وہ نیشنلٹی ملنی چاہیے، لیکن آپ کی پارٹی ہر حکومت میں رہی، کون سی حکومت میں جس میں یہ پارٹی شامل نہیں ہوتی، اور جب یہ بات آتی ہے کہ یہ غیر ملکیوں کو حقوق دیے جائیں تو کون سی مسلطیں ہوتی ہے، یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔
5: یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک چیز نا، بہت ساری چیزیں وہاں دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن اس کا ایک ہی حل ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، کہ پارٹی کے جو اندر لوگ ہیں پارٹی کے جو ممبرز ہیں, میں تو اپنے طور پہ کر رہی ہوں لیکن میں کتنا کچھ اکیلا کروں. تو میں نے تو ان سے باقاعدہ کہا ہے کہ جی یہ آپ کا بجٹ پیش ہونے کے بعد, یہ اکتوبر میں بجٹ ہوتا ہے, تو میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں, جو لوگ انفوس کارڈ کی اس میں کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی سیاست کیسے, جو اپنا پروگرام ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے, مطلب کیا خیال ہے آپ کا کیسے کریں گے, کیونکہ میں اپنا ٹائم دیتی ہوں, میں متحرک ممبر ہوں, آئی ہیو ایوری رائٹس ٹو آسک کہ بھائی تم نے کیا کیا, لیکن ان ووٹ اسی دے کے ڈبے چ بند کر کے مٹھی نیند سو جائیے بیری تلے, پھر تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا.
1: بیری تلے سو جائے لبنا, دیکھیں کہ کاشف جو ہیں وہ کوپن ہیگن کمیون میں ہیں, پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑتے ہیں, بڑے متحرک ہیں, بڑے دھیمے مزاج سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. زہیر علی ہیں وہ بھی ریڈیکل ونسٹا کے ہیں, ان کا بھی اثر و رسوخ ہے. اسی طرح پرانے ہیں ندیم فاروق جو ہیں وہ بھی اسی پارٹی کے ہیں, تو اور بھی بہت سارے لوگ اس پارٹی کے ہیں, تو یہ اپنی پارٹی میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے, یہ ساری ذمہ داریاں آپ پر آتی ہیں.
5: نہیں میں تو اپنے طور پہ اٹھاتی ہوں, میں اور کاشف مل کے کام کرتے ہیں, ہم دونوں نے جتنے خطوط لکھے ہیں ہم نے مل کے لکھے ہیں, اگر میٹنگ ہمیں انہوں نے دی تب بھی میں میرے ساتھ ہوگا, لیکن ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ہے یا دو ہے یا دس ہے, لیکن اگر یہی آواز مختلف کیا کہتے ہیں علاقوں سے آئے, مختلف لوگ اس کا کریں, دیکھیں ہم کسی بھی پارٹی کا کے ممبر ہوں لیکن ہمارا طرز گفتگو, دا وے ٹو ایکسپلین, اپنی بات سمجھانا, اپنا مدعا پیش کرنا, یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں تو اللہ کیا سے کیا ہو جائے, کیونکہ اس کو کہتے ہیں پریشرائز کرنا, ان کو پتہ ہے انہوں نے پوچھنا ہی نہیں مڑ کے, اگلی دفعہ ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے کوئی اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے, پھر اس کو کھڑا کریں گے, پھر اس کی کمپین کریں گے, تو بس کہانی ختم, ہم نے تو کبھی ان سے کچھ مانگا ہی نہیں.
1: لبنا میں آپ کی بات کو لے کر چلتا ہوں کہ ہمارے لوگ, ہمارے سے مراد ہے غیر ملکی ڈینش نژاد جو پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں, باقی تو کمون کا بھی الیکشن لڑتے ہیں, سٹی کونسلر بھی ہیں, پارلیمنٹ کے ممبران بھی بنتے ہیں, ہماری غیر ملکی جو ہیں وہ نژاد جو ہیں وہ ڈینش ہیں, بائی برتھ ہیں اپنا, ان کے والد صاحب یہاں آئے, وہ اب وزیر بن چکی ہیں, تو اگر یہ لوگ اپنے پارٹی منشور پر ہی عمل نہیں کرتے تو ان پارٹیوں میں جانے کا کیا فائدہ کہ اپنے منشور پر ہی عمل نہیں کرتے.
5: راجہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ ایک وہ ڈکٹیٹ ہے املا کے پارٹی کے منشور میں یہ لکھا ہے, ان کے اوپر دوسری طرح کا پریشر ہوتا ہے, بجٹ کی ساری کہانی ہے, ایک پیوند کاری ہوتی ہے, ادھر سے پکڑ ادھر سے جو نہیں ہے, لیکن پریشر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, ہم جیسے کہتے ہیں کہ 100% امپلیمنٹ کرے تو شاید 50% کر دیں, لیکن کرے تو صحیح نا, اور یہ ساری پارٹیوں کی, کیونکہ ڈینمارک میں ایک بڑی عجیب سی شک ہے کہ آپ اس کو ووٹوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا, آپ نے یعنی حکومت بنانی ہے, اسی طرح بجٹ میں بھی ہے کہ آپ کو اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے, تو لیکن ہے کہ میں پھر کہوں گی جو ہمیشہ سے کہتے ہیں, جائیں اپنی پارٹیوں کو اپنی پارٹیوں کے ساتھ کام کریں اور اس میں بھول جائیں کہ کون کیا ہے, یہ جو آپس کی وہ کیا کہتے ہیں ٹسل ہے اس کو بھول جائے, صرف جو ہمارا ایشو ہے اس کو یاد رکھیں, ہم تو سارے مطلب بچے نہیں ہیں, اپنی اپنی زندگی پچھے اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے لیے تو کچھ کر جائیں نا, بچوں کو کیوں سزا ملتی ہے کہ ان کے پیرنٹس نہیں کوالیفائی کر سکتے, ڈینش نہیں بول سکتے یا جرائم پیشہ ہے, بچوں کا اس میں کیا قصور ہے جو یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں. میرا تو ایک ہی آرگومنٹ ہے کہ بچے جو نہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں, یہاں کے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں, بے شک ان کے پیرنٹس یا والدین ڈینش
1: نیشنلٹی. چونکہ آپ اردو بہت اچھا بولتی ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ آپ پنجابی ہیں کشمیری ہیں پشتو سپیکنگ ہیں, اسی طرح سکندر اردو بہت اچھا بولتا ہے, اور بھی لوگ اردو اچھی بولتے ہوں گے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لبرا آپ جس طرح آزادی سے بولتی ہیں, آپ ہی تو پارٹی کی ممبر ہیں, آپ کو کیوں نہیں ڈر لگتا, آپ سب جگہ اپنا آواز اٹھاتی رہتی ہیں, یہی جمہوری حق ہے جو آپ اپنا حق استعمال کرتی ہیں, تو یہ کیٹیگری 5 والا معاملہ ہے, کسی جگہ پہ بھی غیر ملکی جو ہے آپ کی یاد میں ہوگا کہ کبھی غیر ملکی اپنے مفاد کے لیے باہر ڈیمونسٹریشن کر کے نکلے اپنا حق مانگنے کے لیے؟
5: رائے صاحب یہ سارے پارٹی کے اندر, کیونکہ آپ باہر نکلیں گے تو ناراضگی ہو جائے گی کہ جی آپ نے گھر کے کپڑے گندے باہر دھوئے ہیں, پارٹی کی کمیٹیوں میں بیٹھے, پارٹی کے حلقے میں کام کرے, تجاویز حلقے کے ذریعے بھجوائیں, جائیں اپنے حلقے کی جو آپ کی میٹنگ مہینے دو تین مہینے بعد ہوتی ہے اس میں اپنا مدعا رکھیں, وہاں سے پاس کروا کے آگے لے کے جائیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ اکیلی بندہ یا بندی نہیں ہے, یہ صرف پارٹی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اور جہاں تک ڈرنے کی بات ہے, جب مجھے آلموسٹ 9,000 کے قریب پرسنلی ووٹ ملے تھے اور میں بڑی خوشی سے अपनी उस मीटिंग रूम में गई थी, वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस था, सांस लेगी लोगों के सांस की आवाज आ रही थी, मुझे किसी ने भी नहीं उठ के कहा मुबारक को बहुत अच्छा रिजल्ट है। मुझे वहां समझ आ गई थी कि मैंने क्या करना है, क्योंकि वो तो मेरे से कुछ नहीं छीन सके ना। मैं मतलब मेरे मैंने उनसे उस वक्त था क्या था कोपेनहेगन को उन्होंने यूरोप का सकाफती शहर मेंशन किया था, ये चुना था उसके लिए। तो मैंने ये कहा था कि मुझे ये मेरे पास इतने वोट है, आई वांट टू बी अ मेयर। उस पे जी हम इतनी कि हम जो मेयर बैठा होता है उसको नहीं उतारते, हम ये नहीं करते। तो उन्होंने 253 वाले बंदे को जो नहीं वो मेयर बना दिया था, आप कुछ भी नहीं कर सकते।
1: इसका मतलब तो मुझे है वोटों की रिस्पेक्ट नहीं की गई।
5: नहीं वो क्योंकि मेरे वोट से दो लोग और बने थे तो वो उसका तो कोई जिक्र नहीं ना। लेकिन है कि उस चीज ने ना मुझे फुलाद का बना दिया जो मेरे साथ हुआ था ना उसमें। उसके बाद फिर हमारे कुछ पाकिस्तानी भी थे उस वक्त बड़े मुतरक थे, वो वहां के जाके एसएफ से मीटिंग उन्होंने की है। माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें इसी मिशन के लिए भेजा था। इस दुनिया में हर इंसान का अपना मिशन होता है ना। उन्होंने जाके बताया कि जी हम पाकिस्तानी इसके इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। फिर जो है क्योंकि ये कहना गलत है कि मुझे मैं हर किस्म के लोगों से मिलती थी।
1: नहीं आपको तो वोट्स मिले थे ना, चाहे पाकिस्तानी थे चाहे डेनिश थे, जिन्होंने भी दिए वोट तो बाकी किसी को क्या पहुंचता। आपको तो जिन्होंने वोट दिए वो तो सपोर्ट कर रहे थे इसलिए आपको वोट दिए।
5: मुझे डेनिश अरबी इवन सिगोइना ने मुझे वोट दिए। मतलब ये नहीं कोई कौम कह सकती कि वो किया। मैं आज भी नैरोब्रो में जाऊं, मेरा पहला हल्का था, आज भी मैं जाती हूं। मेरा कोई इरादा नहीं इलेक्शन लड़ने का, लेकिन मैं बड़े जाती हूँ उन दुकानों पे, उनसे बातचीत करती हूँ, उनको कुछ छोटा मोटा काम होता है कर देती हूँ। तो लेकिन वो जो जिस तरीके ने इन्होंने मुझे मेरे दिमाग को, मुझे नहीं फिजिकली, मेरे दिमाग को एक एक जिस तरह आइसोलेशन में हिफ्ज़े बिजा में नहीं रखते कि इससे बात नहीं करनी, इससे ये नहीं करना, इससे वो नहीं करना, उस चीज ने मुझे फौलाद का बना दिया। मैं सिर्फ अपने काम का सोचती हूँ। आई डोंट केयर वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ अपने अमल की जिम्मेदार हूँ। और ऐसे मुसलमान हमारे मुनको नकीर बैठे हुए हैं दोनों कंधों पे, तो हमें यही करना चाहिए। तो मैं इस चीज की परवाह नहीं करती कि पार्टी से निकाल देंगे या नहीं कर देंगे। और हमेशा याद करें, याद रखें कि जिस चीज से आप डरते हैं, जिस कोई भी जिस चीज से आप डरते हैं, आपके दुश्मन को पता चल जाता है और वो उसको यूज करता है। मैं तो नहीं डरती ना, उस वक्त के बाद मैं कभी भी नहीं डरी, कभी भी नहीं। उस वक्त मैं भी इलेक्शन के दिन थे, लेकिन मेरे एसएफ से लेकर सोशल डेमोक्रेट में जब भी बयान आते थे तो मैं मतलब पूरे जिसको पंजाबी में कहते हैं तड़ले से वो बोलती थी। मुझे कुदरती तौर पे मेरे वालिद साहब ने मुझे बनाया इस किस्म का, मेरी तरबियत इस किस्म की हुई है कि आप किसी से बदतमीजी ना करें लेकिन अपने अपना मुद्दा जरूर बयान करें। क्योंकि आप अपना मुद्दा बयान करते हैं, मैं अपना करती हूँ, उससे तीसरी खूबसूरत चीज निकलेगी। ये कोई बात नहीं कि आप हर वक्त ये कि मैं आपको बताऊं, तो शरारतन मैं कभी कह देती हूँ किसी महफिल में ना कोई शख्स बार बार के मैं आपको बताऊं, तो बड़े शरारतन मैं कह देती हूँ भाई मैंने तो नहीं आपसे पूछा, आप क्यों बताएंगे, जब पूछूंगी तो बता देना। हम ठोसते हैं अपनी क्या उसको राय एक दूसरे पे ना, ये गलत बात है।
1: लुबना ये कितने दिनों की हुकूमत बाकी है?
5: मुझे देखें अब बजट होना है, अब देखें क्या होता है। पहली तो इनकी लड़ाई हो गई है ना, तो अगर इसी तरह अपनी अपनी जैसे एसएफ के जो लोग हैं, जो इंडिस लिस्ट के लोग हैं, वो अपने अपनी पार्टियों को जरा हैंड्स अप करें ना कि ये इलेक्शन के दिनों में, सॉरी ये जो डेन स्टेट्स वो डेनिश नेशनैलिटी की बात है, तो ये तो इनका पहला बजट है ना। मेरा ख्याल है अगला बजट तक निकाल लें तो बड़ी बात है। मेरी तो उम्मीद है उससे पहले
1: कि सोशल डेमोक्रेट में भी इस तरह की जो ग्रुप बंदी होगी इस पर भी इख्तलाफात हैं वज़ीर आज़म के साथ।
5: बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक पुराना ग्रुप है जो जिसमें पॉल न्यूगोप, यूटे हिल्डन, मुझे तो आप याद भी नहीं कि क्या नाम था उसका, मोन्स लुकेटॉफ, वो मौजूद है। लेकिन उनकी अकलियत है, इतने ज्यादा वो लोग नहीं है, बट दे आर देयर। और वो बिल्कुल मेटे फर्गसन को नहीं पसंद करते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, जो भी नया आता है वो अपनी कुर्सी के लिए सारे बंदों के
1: तो
5: पास
1: पार्टी फॉर मैन बहुत तगड़ा होता है, बहुत पावर होती है उसके पास,
5: लेकिन ये लोगों को अपने साथ मिला लेती है। इसके जैसे इसको अभी पिछले दिनों एक स्कैंडल था कि इसने अपने भाई को की जॉब लेके दी है, इसने फलाने को लेके जॉब दी है, इसके इतने स्कैंडल है आज तक। यानी डेनमार्क में जो असूल है, जो तरीकाकार है, कि जब किसी का क्या कहते हैं, एक वो था तमिल केस था, कंसर्वेटिव का एक था, मुझे अब इस वक्त उसमें नाम नहीं आ रहा, उसने खड़े खड़े इस्तीफा दे दिया
1: जिस पर रिजाइन देकर गए थे।
5: यस यस, पॉल श्लूटा, ये पहला जो है सोशल डेमोक्रेट का चेयरमैन है जिसके स्कैंडल जो भी आते हैं इसका हाजमा इतना स्ट्रांग है उसको निगल जाती है, कुछ कुछ भी नहीं होता। ये जब गई थी कोरोना के दौरान इसराइल में मीटिंग करने, किसी को नहीं पता था, फिर इसने वो जो मिंक्स होते हैं उसका फॉर्म दिलवा दिया, फिर पता नहीं क्या क्या, यानी बहुत सारी चीजें हैं। तो
1: सियासी तौर पर देखा जाए तो अगर सियासी पार्टी, आपने तो पार्टी के मंशूर का कह दिया कि आपकी पार्टी के मंशूर में लिखा हुआ है, क्या बाकियों की पार्टी के मंशूर में भी लिखा हुआ है? ये अपने मंशूर पर अमल नहीं करते ये सारी सियासी जमातें?
5: देखे, पार्टी का मंशूर एक आपकी गाइडलाइन होती है, असल कुवत जो है पार्टी के जो छोटे छोटे हल्के होते हैं वो अपनी तजावीज जो इनकी सालाना मीटिंग होती है वहां पे पेश करते हैं, और फिर जो वहां पे मंजूर होता है या मैनोफेस्टो से निकाला जाता है या डाला जाता है। तो मैं इसलिए नहीं कि मैं बजी दूं कि नहीं यही करो यही करो, यही एक रास्ता है अपनी बातें इंप्लीमेंट करवाने की, अपनी बातें मनवाने की। आप बाहर गोल्स प्लेस पे खड़े हो जाए कोई फर्क, आप अपने जो साथी हैं उनसे लड़े, लेकिन एक जो पार्टी के अंदर जमहूरी तरीके है कि पार्टी के हल्के के जरिए आपने अपनी बात मनवानी है। एक वक्त था कि यहाँ पे खातून थी इस्टब्रोसे कोस्टर थी, रेडिकल वेस्टा की, तो वो रेडिकल वेस्टा की इंटरनेशनल कमेटी में काम करती थी, वो और कुछ दूसरे लोग जाके हमने मंजूर करवाया था जिसको हुबिस्टुअल से कहते हैं कि कश्मीर के बारे में जो रेजोल्यूशन पेश हुआ था वो उस खातून ने करवाया था अपनी इंटरनेशनल उर्वेल में। पहले हमने काम किया, हम 8-10 लोग थे, फिर उसने फर्दर आगे पेश किया कि ये होना चाहिए। और डेनिश सियासत में रेडिकल वेस्ट वाइट पार्टी है जिसने बराबरी की सतह पे होते हुए कश्मीर को एक जो है एक क्या कहते हैं मकाम दिया है, और बकायदा उसके बारे में वोटिंग होकर एक रेजोल्यूशन पास हुई थी कि यूएनओ या उनको इनका जो हिफाजती सलामती कौंसिल है उसके एजेंडे में इस चीज को शामिल करें कि लोग अपना वोटिंग के जरिए जो क्या कहते हैं उसको हके खुद इरादी करें और वोट डालें।
1: खुद इरादियत,
5: हाँ खुद इरादियत, बहुत कम लफ्ज इस्तेमाल होता है ना तो कभी भूल जाता है आदमी। तो लेकिन है कि ये दरवाजे खुले,
1: सारी बातें चलती रहेंगी, आपने कहीं जाना था तो मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया। लुबना, एंड गेम क्या होगी? सियासी बात मैं कर रहा हूँ कि सारी जमातों में गैर मुल्की बैठे हुए मौजूद हैं, जिस तरह हम कैटेगरी 5 की बात करते हैं, कैटेगरी 5 पर कोई अमल दरामद नहीं होता। हमारे डेनमार्क के पाकिस्तान के तालुकात भी बहुत अच्छे हैं और दिन ब दिन आपस में जो ज्यादा मोहब्बतें कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये मामला कैटेगरी 5 वाला वहीं तक है। आप रेडिकेल में मौजूद हैं, दूसरे लोग भी मौजूद हैं, सोशल डेमोक्रेट में भी लोग मौजूद हैं और इनिस लिस्टन में भी लोग मौजूद हैं, और जो बड़े बड़े दावे किए गए, चूंकि आपका कोपेनहेगन कमून का भी बहुत तजुर्बा है, बड़े बड़े दावे किए गए, दांतों का इलाज, आंखों का इलाज, अस्पतालों का इलाज। लुबना, एक सवाल है बॉटम लाइन, आपकी अगर ना करे किसी की, अल्लाह करे टांग ना टूटे, उसकी टांग टूट जाए, उसको एम्बुलेंस आती है, ले जाती है, अस्पताल जाती है, 100% फ्री इलाज होता है, लेकिन अगर आपका दांत टूट जाए तो वो फ्री इलाज नहीं होता।
5: ये एक अजीब सी चीज है डेनिश सिस्टम में, लेकिन अब पता नहीं, एक तो वो सुना है कि जो एक मखसूस एज से ऊपर लोग होंगे उनके पहले इलाज होंगे, फिर पता नहीं किसका होगा। इसी तरह वो जो था बस के टिकट्स का कि ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, आप कहीं भी नौजवान जाएं, वो भी कुछ नजर नहीं आता। तो ये बस मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कुछ चीजें डेनमार्क में भी आ गई हैं। इलेक्शन
1: जो लोग पार्लियामेंट में या कम्यून में बोलते हैं उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं, तो फिर इस तरह तो मसाइल कभी हल नहीं होंगे। लोग जो बोलते हैं वो नुकसान भी सियासी उठाते हैं, जो नहीं बोलते वो बंद कमरों में फायदे भी लेते हैं। बंद कमरों की पॉलिसी भी बहुत अच्छी होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी होनी चाहिए।
5: नहीं, मतलब मैंने तो जब भी अपने लोगों की बात की है मुझे नुकसान ही हुआ है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि जब आप ये फैसला करते हैं कि जी मैंने इंसानों के लिए कुछ करना है या अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो आपको गंदगी से गुजर के जाना पड़ता है। अपने जहन को ये तैयार रखना चाहिए, चाहे आपके मतलब मेरे से ज्यादा क्या, नासर कादर ने भी कभी वोट नहीं लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गई थी कि इन्होंने मुझे यूज किया एक मतलब काली औरत के तौर पे, मेरी वजह से इनको वोट मिले हैं, तो वो इन्होंने आगे आगे मुझे किया, मैंने बोलना शुरू कर दिया, फिर इनको भीड़ होगी कि ओ ये तो जाहिर है मैं यहाँ के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, तो अंगूठा छाप तो नहीं थी ना। तो ये है कि बस अपनी पार्टियों में काम करें, मैं फिर वही कहूंगी, अपनी पार्टियों में काम करें, जो आपका मौकफ है वो पार्टी का मौकफ बनाए, आपको कोई वो जिसको डेनिश में नहीं कहते दाइंग खेम हुआ, कोई नहीं आपको तसल्ली देगा, कोई नहीं कुछ होगा, लेकिन जब एक चीज पार्टी के अंदर जमहूरियत के तकाजों को पूरा करते हुए कोई चीज पास हो गई, उनकी कोई चाहत नहीं रहती ना, लेकिन बाहर हम कितना भी करते रहे तो वो कभी कहेंगे तुम सूलो हो, तुम अकेला काम करते हो, पार्टी तुम्हारी वजह से बिखरती है, बड़े बड़े मेरे जैसे लोगों के नाम
1: है। देखे ना, मैं आप ही की बात लेकर चलता हूँ, आपको भी वोट मिले, पावर मिली। मैना येलवे जो है वो एक पावर खातून जिसे कहते हैं आयरन लेडी, इसी तरह मार्गरेटे वेस्टा, इनके पास पावर आई। अब रेडिकेल के जो फोरमैन है इनके पास पावर आई, तो जब जब पावर आई तो इन्होंने अपने बैग में वोट डाले, तसलियाँ दी, पपियाँ दी, टॉफ़ी दी, इश्तियारात दिए, अच्छी जगहों पे बैठाया, तालियाँ बजवाई। जब वक्त आया काम करने का तो फिर जिस तरह आपको मिलना चाहिए था, मेयरशिप की सीट मिलनी चाहिए थी आपको, आगे पीछे करके किसी और के हिस्से में चली गई। इसी तरह ये भी हमसे वादे करते हैं, वक्त आता है तो फिर हमें भी इसी तरह जिग जैग कर जाते हैं। तो कभी हमने भी जिग जैग किया?
5: राय साहब, मैं फिर वहीं से कहूँगी कि हमारे डेनिश सियासत में मुलव्वस होने का तरीका कार ही गलत है, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौन है, तुर्की कौन है, अरबी कौन है, हम इनकी नजर में सबसे पहले पाकी है या इनवान खान है, दे डोंट केयर कि हम किस जगह से है ना, हमारी रंगत काउंट करती है कि हमारे काले बाल हैं या ब्राउन चेहरा है। तो हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे क्रॉस द पार्टीज, देखिये कितने कौंसलर हैं लेकिन कोई भी नहीं, आप इकट्ठा करके बता दें तो मैं मान जाऊंगा। मैंने कई दफा तुर्कियों से वो किया, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, तो पहले आप ये फैसला करें आप करना क्या चाहते हैं। मेरा एक स्लोगन होता था कि मैं पहले गैर मुल्की हूँ, उसके बाद मैं किसी पार्टी से की मतलब मेरी जो क्या कहते हैं उसकी मेरी वस्ती के अलावा भी जो क्या कहते हैं मतलब आई एम लॉयल जो नहीं है मैं वफादार कि मैं
1: पहले इनवान
5: नहीं मैं आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी सोल्जर कि मेरी वफा सबसे पहले इनवानता से है, उसके बाद मैं सोशल डेमोक्रेट की हूँ या SFP व्हाटएवर जो। तो मैंने तो कभी नहीं छुपाया क्योंकि उस रात मुझे समझ आ गई थी कि मेरी औकात क्या है। उसके बाद पाकिस्तानी तंजीमों के कुछ लोग थे, उन्होंने मीटिंगें की, बताया उन्होंने कि हमने तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं की, मेरी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उनको
1: तंजीमों के लोगों को क्या तकलीफ थी
5: पता नहीं,
1: क्या वो भी उम्मीदवार थे आपकी सीट के?
5: नहीं नहीं वो बस वैसे ही वो पंजाबी कहते ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। मैंने कब कहा है कि मेरे सारे वोट पाकिस्तानियों के, अव्वल तो हो ही नहीं सकते थे, हम 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही अफसोस है कि अभी भी हर साल जब होता है इलेक्शन कमून का होता है, मैं सबको कहती हूँ मिलके बैठो, जहां से हमने सीखा जरूरी नहीं तुम वही धक्के लो, ये जो है बजट की गेम क्या है। मेरा ख्याल है कंदर सदीक वाहिद होगा जिसको पता होगा, क्योंकि वो एक अपनी नौजवानी में भी काउंसलर रहा है, फिर उसने पार्लियामेंट में भी किया है और अभी जो नहीं है स्टिल काउंसलर है। तो बाकी तो किसी को नहीं पता कि ये गेम क्या है, वो एक दो साल बाद उनको समझ आएगी, लेकिन एक एक टर्नोल 4 साल का होता है, 2 साल तो चले गए ना। अब 4 साल के अंदर जब नवंबर में इलेक्शन होते हैं, हर साल अक्टूबर में बजट पास होता है, ठीक है, यानी जो लोग पिछले साल नवंबर में चुनाव जीते हैं उन्होंने किसी और का मंजूर शुदा बजट पे 1 साल काम, जिन्होंने बजट उनको दिया उनकी अपनी तरजीहात थी कि उन्होंने किस चीज को प्रायोरिटी दी है, सड़कें बनानी है, स्कूल नया बनाना है। अब कोपेनहेगन कमून में ये जो है कि एक बूढ़ा शख्स, मेरा ख्याल है 125 ग्राम गोश्त उसको हफ्ते का मिलेगा, तो मेरे दिल को तो बहुत बुरा लगा। मैंने उठा के जो है आगे पीछे खत लिखे हैं कि जी ये तो एक बूढ़े इंसान को प्रोटीन चाहिए। हाँ मैंने ये जरूर कहा कि जब ये बीमार होंगे तो काइंडली देखो कि एक अस्पताल का बेड क्या कॉस्ट करता है, तो तुम उनको ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों मार रहे हो, क्यों इतना कम की खुराक तुम्हारा मतलब है, खुद तुम इतने इतने बड़े बीफ खाते हो। तो वो उन्होंने तो अपने हिस्से का काम किया है ना, उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाई है, उन्होंने अपना टैक्स दिए हैं, अपनी पेंशनें जमा की हैं। ये ATP को ले लें, ATP एक जगह टैक्स है, لوگ کیوں دیں اے ٹی پی، لیکن وہ ملک کے پاس اتنے پیسے ہیں اے ٹی پی کے کہ آپ کی سوچ ہے، وہ جب جب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں میں بھی کسی کو 100 تو کسی کو 300، لیکن ٹیکس کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اب کیوں اے ٹی پی لے رہے ہیں؟ تو
1: یہ لبنہ آپ کا بہت شکریہ لبنہ، آپ نے یہ بھی بڑی بریکنگ نیوز دی کہ سکندر سٹیل ابھی تک کمیون کا ممبر ہے، تو لوگ تو خوشی بھی سے بھی ایک دوسرے کو مبارکیں بھی دے رہے ہیں، لیکن چلیں آپ نے چونکہ آپ رہی ہیں سسٹم کو سمجھتی ہیں کہ سٹیل وہ سٹی کونسلر ہیں۔ لبنہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔
5: چلیے ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو۔
1: سامعین ناظرین، یہ تھی سابقہ سٹی کونسل لبنہ الہی صاحبہ، جو کہ متحرک ہیں، ریڈیکل ونسٹا کی جو ہیں وہ متحرک ممبر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی پارٹی کے منشور میں ہے کہ بائی برتھ جو ہے وہ شریعت دی جائے، اب لوگوں کو بولنا چاہیے، پارٹی ممبران کو بولنا چاہیے، اس پارٹی میں جو شامل ہے ان کو بولنا چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے منشور میں یہ بات شامل ہے، آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح کیٹیگری 5 کی آواز اٹھانی چاہیے۔ اکثر ہماری بات چلتی رہتی ہے، آپ کی ریکارڈ بھی بات ہوتی رہتی ہے، وہ چونکہ اس بھی سر صاحب اپنی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان کی ہمارے وزیر خارجہ سے اکثر ملاقات رہتی ہے، پچھلے دنوں بھی ان کی ملاقات ہوئی، بہت جلد جو ہیں زہیر علی بھی ہمارے مہمان ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔
6: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामे नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह हमने आपको इंट्रो में भी बताया था, मलिक सिकंदर सिद्दीक जो के साबका पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, डेनिश कोपेनहेगन पार्लियामेंट के जो है, कम्यून के जो है उसके भी मेंबर हैं, वो स्टिल मेंबर हैं। इनसे आज हमने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को देखने को मिलती रहती हैं और हम देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं और लोगों की बातें भी सुनते रहते हैं। लेकिन आज चूंकि सिकंदर सिद्दीक प्राय रास्त हमारे साथ मुखातिब होंगे, लाइव है इस वक्त हमारे साथ। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जनाब राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का, जितने भी आपके सामईन हैं उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम सिकंदर, चूंकि खबरें बहुत गर्म हैं, अखबारात जो हैं, टीवी चैनल्स भी हैं और सीना गजट भी खबरें चलती हैं और जो खबरें होती हैं वो कोला नमा खबरें, जलने जलाने वाली, धुआं छोड़ने वाली भी खबरें चलती हैं, तो डायरेक्ट मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। आप कोपेनहेगन सिटी काउंसिल के रुकन भी हैं, रुकनियत से सुनने में आ रहा है कि आपको डी सीट करने का असूली कानूनी फैसला किया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे?
2: मैं जनाब राजा साहब ये कहूंगा कि सियासत में आपको बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे डी सीट करने का, अनसीट करने का फैसला मिनिस्ट्री के जो एस्टेब्लिशमेंट में जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये कर दिया है और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि मैंने जो इसराइल के खिलाफ, मैंने जो डेनमार्क की हिस्ट्री में पहली बार इस तरह खुलेआम जो एक टैबू था ज़ायनिस्ट लॉबी की जो इन्फ्लुएंस है यहाँ की पॉलिटिक्स पे, उस पे हमने बात की तो इन्होंने फिर ये बिल्डअप, प्रेशर बिल्डअप किया और ये जो है सारा केस शुरू किया और मेरे जीते हुए इलेक्शन, मेरा जो मैंडेट है जो मैंने भरपूर वोट के साथ लिया है उसको मिनिस्ट्री के

0: हैगन में इलेक्शन लड़ने जाए और इसलिए मैं ख्याल है उससे अब कोपन हैगन शिफ्ट होऊंगा और इलेक्शन लड़ूंगा। ये मैंने अखबार में भी आया पता कि भाई सिकंदर इलेक्शन लड़ रहा है कोपन हैगन में, वो शिफ्ट होगा कोपन हैगन ख्याल है उसे। फिर उसके बाद मैंने अपने पेपर सबमिट किए तो उसमें भी उन्होंने मुझे कुलखंड किया कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ है और ये बिल्कुल सही है, आप इलेक्शन लड़ें, और तब भी कोई मसला नहीं था। फिर जब मैंने इलेक्शन के दौरान जब ये एजेंडा उठाया कि जो इसराइल में ये बर्बरियत कर रहे थे मुसलमान फलस्तीनियों पे और क्रिश्चियंस पे मुसलमानों पे जो ये कत्लेआम वहां पे कर रहे थे, तो फिर हमने यहाँ पे एक भरपूर कैंपेन चलाई और जिसमें हमने सबसे पहले तो ये कहा कि डेनमार्क की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि इसराइल के खिलाफ इसराइल जो है उसको डिसॉल्व किया जाए और एक स्टेट बनाई जाए फ्रॉम द रिवर टू द सी जिसमें सारे इक्वल राइट्स के साथ रहें। फिर उसके बाद हमने जब देखा कि यहाँ भी बहुत इन्फ्लुएंस है, दुनिया में हर तरफ इनका इन्फ्लुएंस है, एपेक अमेरिका में इनका इन्फ्लुएंस है सियासत पे, तो ये बातें कभी पहले किसी ने की नहीं थी, तो हमने इसको यहाँ पे प्लेकेडा बनाए कि इनकी जो ये इन्फ्लुएंस है इसको यहाँ पे खत्म किया जाए। उसके बाद आपको याद है कि फिर एक पहाड़ टूट पड़ा और इन्होंने पहले मेरे करेक्टर एसासिनेशन करने की कोशिश की कि मतलब हम सिकंदर को रोक लें, और फिर इन्होंने जो टेंथ ज़ियोनिस्ट फोब होना है इन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस केस किया, FIR कटवाई, तो इन्होंने फिर बहुत फिर जो यूरोपियन ज़ायनिस्ट फोब होना है जो इनकी जो इसराइलियों की जो यूरोपियन जो काउंसिल है उसने फिर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को लिखा और कहा कि ये प्लेकेडा उतारे जाएं और ये माफी मांगे और ये वो। हम टस से मस ना हुए, हमने अपनी कैंपेन जारी रखी और अल्लाह के फजल करम से हमने एक पार्ट एक हिस्ट्री।
1: ये आपको डेनमार्क का कानून इजाजत देता था?
0: बिल्कुल इजाजत देता था, बिल्कुल कानून के हद के अंदर हमने रह के ये सब कुछ किया है। तो फिर हमने इलेक्शन लड़ा और आप देखें कि हमने सीट निकाली जब लास्ट लोगे की मॉडरेट पार्टी है वो सीट नहीं निकाल सके कोपेनहेगन में, इंगा स्टॉयबर्ग की डेनमार्क से मुखार है वो सीट नहीं निकाल सके जो हकूमत में लास्ट लोगे बैठा हुआ है फॉरेन मिनिस्टर है वो उसकी पार्टी सीट नहीं निकाल सके, हमने निकाल ली, अल्लाह के फजल था। तो इनको बड़ा शौक लगा, फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा अब इलेक्शन तो जीत गया लेकिन इसको एक मिसाल बनाना है बकाया सारे सियासतदानों, ये मेरी मतलब शौक नहीं है कि इसको मिसाल बनाना है कि जो आपने बात की ये अनएक्सेप्टेबल बात है। तो फिर अचानक क्या हुआ, इन्होंने अचानक ये खोल दिया किस्सा कि ठीक है हम मानते हैं कि आप कोपेनहेगन में आपकी रिहाइश है लेकिन वो आपकी प्राइमरी रिहाइश नहीं है, यानी कि वो आपकी अव्वल रिहाइश नहीं है, आपकी जो अव्वल रिहाइश है वो बनती है हेलो, तो क्योंकि हेलो में बनती है तो फिर आप यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यहाँ पे आप सीट आपके आप इसमें नहीं बैठ सकते। फिर इसमें हमारे वकील ने इस पे बहस की जद्दोजहद की, इसी तरह जो यहाँ का फवेल्टिंग वो उसने भी लिखा एक नोट केस देखा और लिखा कम्यून गलत कर दिया। तो फिर ये केस जो है ये मिनिस्ट्री में गया और मिनिस्ट्री ये किसी ये भी लोगों को शायद है कि पता नहीं ये किसी कोर्ट ने जजमेंट दी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर है उसके अंडर जो स्टाफ होता है वो लोग मतलब जो आप कह लें कि जो ऑफिसर्स होते हैं जो
1: एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं। कहने का मतलब है कि केस जो है वो अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, इसकी बुनियादी वजह ये थी?
0: नहीं, अदालत ने फैसला दिया ही नहीं है, अदालत में गया ही नहीं है, ये समझने वाली बात है कि ये मिनिस्ट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला हुआ है, ये कोर्ट में तो गया ही नहीं, अगर ये कोर्ट में जाता तो हम इसको यकीनन जीतते, इसको भी मैं अभी आगे आता हूं। तो ये फिर मिनिस्ट्री ने फैसला दिया कि ठीक है आपकी रिहाइश है कोपेनहेगन में लेकिन वो आपकी प्राइमरी नहीं है।
1: तो चले मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ देता हूँ, क्या ये फैसला हतमी है या इसके खिलाफ आपको अपील का हक आपके पास मौजूद है?
0: मेरे पास अपील का हक है लेकिन मैंने अभी फिलहाल ये फैसला किया है कि मैं इसको कोर्ट में नहीं लेके जाऊंगा, उसकी रीजन है लेकिन मैं इस पर भी बाद में आता हूँ, मैं जरा पहले वो अपनी बात खत्म कर लूँ। तो फिर कहने का मकसद ये है कि रीजन उन्होंने ये दी है कि आपकी रिहाइश है, हमने आपके पेपर भी सबमिट किए थे, इलेक्शन कमीशन ने आपको पास किया था, कैंडिडेट बनाया था, लेकिन आपकी वो प्राइमरी आपका वो फर्स्ट अव्वल रेसिडेंस नहीं है, अव्वल रेसिडेंस आपकी हेलो में है, इस वजह से हम आपको आपको डिसीट करते हैं और आप नहीं बैठ सकते। ये उन्होंने फजूल सी

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ बरतानिया की फिजाओं से मोहतरम शाकर साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं। डेनमार्क से नौजवान मियां मनशा, ये भी किसी तारफ के मोहताज नहीं, ये अपनी बात करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। शाकर साहब जो हैं वो बड़े धीमे आवाज़ में बोलते हैं, बड़ा नॉलेज रखते हैं, इनको बहुत सारे प्रोग्रामों में हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और इनकी राय जो होती है वो अपनी एक ठोस हकीकत रखती है। चूँकि आज 6 सितंबर का दिन है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं, तो शाकर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं बरतानिया की फ़िज़ाओं से, और मियाँ मनशा आपको डेनमार्क की फ़िज़ाओं से खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया राया साहब, आपको और शाकर भाई को और तमाम जितने भी सुनने वाले आपके सामाईन हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। मियाँ मनशा आप नौजवान हैं, आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज़माना देखा, पढ़ाते भी रहे, तो 6 सितंबर का आज प्रोग्राम है, 6 सितंबर आज, तो आप 6 सितंबर के हवाले से क्या कहेंगे?
2: जी राय साहब, सबसे पहले तो हम अपने जितने भी शहदा हैं जिन्होंने 6 सितंबर को डिफेंस करते हुए कुर्बानियां दी, अल्लाह की राह में अपनी जानें दी, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी बहादुरी की दाद देते हैं कि दुश्मन ने जब भी हमारे ऊपर अटैक किया, वो 71 हो, 65 हो, वो कारगिल का मैदान हो, जब जब भी अटैक किया, तो अल्लाह ताला का ये बहुत करम है और हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमारी

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बसमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मुसलमान, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मुसलमान इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मौजूद सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किए हैं। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूल एंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे, डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندرہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائند آباد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।